0: ज्यादा से रहते रहेंगे।
1: हेलो वर्मा पाई
0: साथी रहे
1: हेलो गीले
0: खाता खाता खाता
1: ओ यार वो कौन
0: हम मत तो छे
1: हेलो गीले वर्मा पाई।